Olive. 106.3 FM. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
3: ससिका जी, मैं हां हरभजन मान। तुसी सुन रहे हो कतर हिंदी रेडियो स्टेशन, रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM, जियो बिंदास।
4: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर 1 एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: ओए हॉली हॉली

गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास। आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3 FM। जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: Song. Radio Olive पर आने वाला गाना Cool Song of the

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
2: नमस्कार, मैं हूँ गुलराज सिंह।
3: गुलराज सिंह
2: और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3
3: जियो बिंदास।
4: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क। सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड दी हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
2: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.

0: खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
2: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
1: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
2: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
1: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।

0: कानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरेडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडू।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
3: मैं हूं अनिल कपूर, रेडियो ऑलिव।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड दी हैप्पीनेस,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
2: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरेडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडू।

गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटीजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
3: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
2: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
3: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
2: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
4: दिस इज अमायरा दस्तूर ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर, अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर, एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।

देखो मैं एक बार को फिर भी मान लूं, लेकिन मेरा दिल जो है वो बिल्कुल नहीं मान रहा है कि वीकेंड जो है वो खत्म हो गया है ना, आज ऑफिस आना पड़ा है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिफ पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड देखिए, जैसे मैं हर वीकेंड से आने के बाद यही कहती हूँ, वैसे ही फिर से कहना चाहती हूँ कि मैं नहीं आई हूँ आज ऑफिस, मेरा सिर्फ शरीर आया है। अभी मेरी सोल जो है वो मेरे ब्लैंकेट के अंदर जो है AC 16 पे करके सो रही है, क्योंकि मुझे उठने का जो है मन ही नहीं करता है। मन छोड़ो, मेरी हिम्मत ही नहीं होती उठने की। कल जो है मैंने जितनी सीरीज हो सकती थी वो सारी निपटा दी है, सिर्फ इसीलिए ताकि मैं आके आपको रिकमेंड कर पाऊँ। एंड रिकमेंड करने के लिए आना ज़रूरी है, बस इसीलिए मुझे आना पड़ा। देखिए आपकी वैल्यू कितनी ज़्यादा है मेरी लाइफ में कि सिर्फ आपसे बातचीत करने के लिए मैं उठ के आई हूँ। वरना मुझ जैसी आलसी इंसान जो है ये तो खुद चाय बनाने के लिए उठती नहीं है, मैं चाय भी ऑर्डर करके पीती हूँ। ठीक है, ये बात बस मम्मी को मत बताना मेरी। 3311063 मेरा व्हाट्सएप वाला नंबर है, इस पर अगर आप मुझे बता सकते हैं कि यार आपका वीकेंड कैसा रहा, क्या कुछ किया। एंड आप में से बहुत सारे लकी लोग ऐसे हैं जिन्हें आज ऑफिस नहीं जाना है, आज भी उनका जो है वीकेंड ही चल रहा है, आज भी उनकी छुट्टी है। सो किस तरीके से आप बिताने वाले हैं अपना ये वीकेंड, बताइए मुझे 3311063 पर। फिलहाल कॉकटेल 2 मूवी का ट्रैक जो है आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इस गाने को आप इंजॉय कीजिए। एंड अगर मूवी का प्लान है तो कौन सी मूवी जो है इस वक्त लगी हुई है एंड कौन सी आपको देख लेनी चाहिए ये मैं बताऊंगी, क्योंकि एक मूवी जो है वो बहुत खराब है। कौन सी मूवी है बताऊंगी। फिलहाल जब तलक गाना एंजॉय कीजिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड win.
2: Hello to all the listeners of

एक बार को हम सबको ये डाउट हो गया था कि इतने अच्छे गाने चल रहे हैं कैसे, पर क्या करें यार, रेडियो ऑलिव की प्लेलिस्ट इतनी अमेजिंग जो है। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड एक बहुत ही बढ़िया पीस ऑफ एडवाइस मैं आप लोगों को दे रही हूँ, अगर आप लोग किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हो एंड उसको जो है एक गाना डेडिकेट करना चाहते हो, मतलब ऐसा जो है आप चाहते हो कि उन्हें स्पेशल फील हो जाए फ्रॉम लाइक नो वेयर, तो अभी उन्हें बोल दो कि अपना जो है रेडियो ट्यून इन कर लें, क्योंकि अगला जो गाना आने वाला है वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। अगर किसी को अपने प्यार का इजहार करना है या कुछ भी ऐसा जो है उन्हें बस फील गुड कराना है, तो यार अपने पार्टनर को बोल दो कि जल्दी से वो रेडियो ऑन कर लें और उन्हें ये बोल देना कि ये जो अगला गाना है वो मैं तुम्हें डेडिकेट कर रहा हूँ, मुझ पे इतना भरोसा तो कर सकते हो ना, अगला गाना बहुत ही ज्यादा अमेजिंग वाला होने वाला है बस। तो जल्दी जल्दी से अपना फोन उठाओ और मैसेज कर दो, बाकी मुझे भी अगर मैसेज करना चाहो तो कर सकते हो 3311063 पर। फिलहाल बात कर लेते हैं टेम्परेचर की, मौसम की। तो देखो यार, कल जो है मेरे कपड़े इतने बढ़िया तरीके से जो धोए थे वो सूख गए, क्योंकि बाहर का मौसम जो है वो बढ़िया था, ह्यूमिडिटी थोड़ी कम थी लेकिन टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा था। आज का मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 39 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, हाईएस्ट टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है एंड लोएस्ट टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। अब देखिए, आई होप आप सबने अपने अपने लव्ड वंस को जो है मैसेज कर दिया होगा कि अगला गाना आपके लिए जो है वो मैं प्ले कर रही हूँ। सो बस जितने भी लोगों ने अपने पार्टनर्स को मैसेज किए हैं, उनके तरफ से उनके पार्टनर्स के लिए, उनके लव्ड वंस के लिए ये गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर। मूवी का नाम बॉडीगार्ड, गाने का नाम आई लव यू। अभी भी वक्त है, मैसेज कर दो। मैं हूँ आपकी कशिश, स्टे ट्यून रहिए मेरे साथ 106.3 रेडियो ऑलिव पर और कहते रहिए जियो बिंदास।

हमारी अधूरी कहानी मूवी से पपॉन की आवाज में ये ट्रैक एंजॉय किया आपने 106.3 रेडियो ऑलिफ पर। मैं हूँ आपकी कशिश शो, आपके लिए ले आई हूँ लाइफ मस्त है। अब देखिए यार, वादे के अनुसार जैसे मैंने आपसे ये कहा था कि मैं आपको मूवी रिव्यू दूंगी कि अगर आप मूवी का जो है प्लान बना रहे हैं तो कौन सी मूवी नहीं देखने जानी है। सो देखिए, वेलकम टू द जंगल एक मूवी रिलीज हुई है अक्षय कुमार की एंड बहुत सारे अलग एक्टर्स की, मतलब बहुत आधा बॉलीवुड है उस मूवी में। सो ये मूवी अगर आप नहीं देखेंगे तो भी चलेगा। मैं ऐसे कोई वर्डिक्ट नहीं देना चाहती कि मूवी बहुत बुरी है, लेकिन अगर इस मूवी का नाम वेलकम टू द जंगल की जगह वेलकम टू द कियोस होता तो ज्यादा बेहतर होता। किसी शादी वाले घर में ना इससे कम केओस होता है। मतलब पता नहीं मूवी में क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आता है, बस ऐसा लगता है कि यार सरदर्द हो रहा है। और पहली बार ऐसा हुआ है जब क्रिटिक्स एंड ऑडियंस जो है वो सेम एक आउटकम पे पहुंची है कि मूवी बहुत ज्यादा केओटिक है, बहुत कुछ साथ में हो रहा है एंड एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी फन, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है।

0: fresh song of the hour. Ye gana.
1: फिलहाल फ्रेश मूवी को छोड़ो, फ्रेश गाना एंजॉय करो. चांद मेरा दिल से ये ट्रैक आ रहा है रेडियो सेट्स पर. जियो बिंदास.

0: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
1: हेलो लिसनर्स, मेरा नाम है राजपाल यादव और आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM. जियो बिंदास.

0: देखिए कुछ गाने ऐसे होते हैं जिन पे आप डांस करना जो है शुरू एक बार कर देते हैं तो फिर भूल जाते हैं कि यार अभी तो काम भी करना है। और बस ये जो गाना था अभिजीत सावंत की आवाज में ये कुछ वैसा ही था। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑल ऑफ पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइव मस्त है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइफ को आसान बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का अब कुछ ज़्यादा ही उपयोग हो रहा है, और वर्ड उपयोग नहीं होना चाहिए, आई थिंक दुरुपयोग हो रहा है। हाँ, अब हम टेक्नोलॉजी को जो है इल ट्रीट करने लग गए हैं, मिसट्रीट करने लग गए हैं अपने फ़ायदे के लिए। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इन्वेंशंस कर रहे हैं ना वो लोग ज़रूर एकदम कोर से मेरी तरह हैं आलसी, और इस आलस के लिए जो है वो कितनी भी मेहनत करने के लिए तैयार है। उनका कॉन्सेप्ट ये है कि अभी मेहनत कर लेते हैं, अभी टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप कर लेते हैं, फिर आराम से बैठेंगे बस। सो चाइना ने एक टेक्नोलॉजी डेवलप करी है, टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक डिवाइस जो है वो डेवलप किया है जिसे एक बटन आप दबाएंगे एंड वो टॉयलेट सीट लेकर आपके बेड तक आ जाएगा। यस, टॉयलेट सीट आपके बेड पर आ रही है अब। वो यार समर वेकेशन में होता था ना, मम्मी कहती थी कि यार तुम लोग बेड से मत उठो, है ना, खाना भी यही है, सब कुछ यही कर लो। बस मम्मी अब ये पॉसिबल हो पाएगा। वैसे कहा ये जा रहा है कि ये जो इन्वेंशन है ये कहीं ना कहीं ओल्ड एज जो लोग होते हैं उनके लिए, या बीमार लोग जो हैं, या फीमेल्स हैं जो उठ नहीं सकती हैं उनके लिए जो है ज़्यादा बेहतर है। लेकिन देखना, मैं ये जो है भविष्यवाणी कर रही हूँ कि ये अगर टेक्नोलॉजी मार्केट में आ जाती है तो इसका इस्तेमाल जो है बीमार लोगों से ज्यादा हम जैसे आलसी लोग करेंगे। वैसे देखिए कूल आइडिया तो बिल्कुल नहीं है ये, लेकिन आपको क्या लगता है ऐसे कौन कौन से इन्वेंशंस हैं जिनकी अभी हमें जरूरत है कि यार ये इन्वेंट कर दो फिर हमारी लाइफ जो है वो सॉर्टेड हो जाएगी। 3311063 इज द नंबर, 3311063। नहीं समझ आए तो एक और बार पूछ लेना, बता देंगे यार 3311063। फिलहाल कूल सॉन्ग ऑफ द आरआर आपके रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय कीजिए।
1: कूल सॉन्ग रेडियो ऑल पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरेडू ऐप पर. Experience more with ओरेडू.

आई थिंक इस गाने में उदित नारायण जी और अलका याग्निक जी जिस लड़की की बात कर रहे हैं वो लड़की आपसे बात कर रही है, यानी कि मैं, मेरी दास्तां कोई किसको क्या ही सुनाएगा, सब तो मैं खुद ही बोल देती हूँ। वेलकम बैक 106.3 रेडियो अलिफ पर, मैं हूँ आपकी कसूस एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। थोड़ी सी देर पहले हम ये बातचीत कर रहे थे कि यार ऐसी कौन सी जो है टेक्नोलॉजी डेवलप हो जानी चाहिए, ऐसी कौन सी डिवाइसेस जो है वो लॉन्च हो जाने चाहिए जो हमारी लाइफ को आसान बना देंगे, हम जैसे लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है चीजों की। सो बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया है, लेकिन सब जो है ऐसी चीजें कह रहे हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यार कशिश मेल लिखने में काफी दिक्कत आती है, तो मेल मुझे मेरे बॉस को रिप्लाई करने के लिए कोई होना चाहिए। देखिए ये वाला काम तो आप एआई से करा सकते हैं, और अब तो एआई जो है वो इतना ज्यादा डेवलप्ड होकर आ रहा है कि आपके मेल का रिप्लाई आपके अभी प्रीवियस सर्चेस के हिसाब से, आपके काम के हिसाब से ऑलरेडी एआई जो है आपको दिखा देगा। बस आपको सेंड बोलना है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है, इसको सेंड कर दो। सो अब मेल्स भेजने के लिए तो मुझे नहीं लगता कि टेक्नोलॉजी चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। बाकी मम्मी के सारे काम करने के लिए ठीक है गाइस, मतलब मम्मी आपके लिए बचपन से इतना काम कर रही है और आपको मम्मी के काम करने के लिए अब रोबोट की जरूरत चाहिए। देखिए झाड़ू जो है रोबोट लगा सकता है, पोछा रोबोट लगा सकता है, सब कुछ रोबोट कर सकता है, तो आपकी जरूरत क्या है? बस आपको ये कहना है कि रोबोट को चलाने के लिए, उसे कमांड देने के लिए भी तो कोई इंटेलिजेंट होना चाहिए ना। ठीक है गाइस, कोई बात नहीं, आप मुझे अभी भी बता सकते हैं कि ऐसी और कौन कौन सी चीजें हैं जिसे करने के लिए अभी टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप होनी चाहिए। 3311063 ये जो है मेरा नंबर है, इस पर आकर व्हाट्सएप कर दीजिए, बता दीजिए। लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि लड़कियों का मूड जो है वो एनालाइज करने के लिए आपको डिवाइस की जरूरत है, ये तो आपको खुद ही समझना पड़ेगा यार, इतना सेंसिबल आपको होना पड़ेगा। मतलब मुझे ये बात समझ नहीं आती है कि लड़के जो है एक बार किसी का यानी अपनी पार्टनर का, अपनी बहन का, अपनी मम्मी का मूड ऑफ करने के बाद फिर से सेम गलती किस तरीके से जो है निभा सकते हैं, मतलब कैसे कर सकते हो आप, कैसे एक गलती रिपीट पे कर रहे हो आप हर बार कर रहे हो, मुझे तो नहीं समझ आ रहा। फिलहाल मेरा वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग यूं ही आ रहा है मोहित चौहान की आवाज में आपके रेडियो सेट पर, इस गाने को एंजॉय कीजिए। वापस लौट कर आएंगे तो आज का मूवी रिकमेंडेशन जो है वो मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी मूवी है या कौन सी सीरीज है जो आप देख सकते हैं, थोड़ी सी हटके है, थोड़ी सी यूनिक है। बाकी फिलहाल मेरा फेवरेट वाला गाना मोहित चौहान की आवाज में तनु एज मनु से एंजॉय कीजिए, और आपकी कशिश के साथ स्टे ट्यून रहिए, कहते रहिए जियो बिंदास।

केसरिया गाने का नाम है, ब्रह्मास्त्र मूवी का ये ट्रैक है अरिजीत सिंह की आवाज में। और ये गाना सुन के मुझे सच में 2022 याद आ गया। 2022 जब मैंने कॉलेज जाना शुरू किया था तब ये मूवी रिलीज हुई थी एंड मैं अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ ये मूवी देखने के लिए गई थी। एंड उसमें जब लिखा आया था कि जो नेक्स्ट पार्ट है वो 2026 में आएगा, मुझे लगा था कि यार 2026 कितना दूर है ये, मतलब पता नहीं क्या होगा तब तक, मैं देख पाऊंगी या नहीं देख पाऊंगी ये मूवी, पता नहीं 2026 क्यों, इतनी दिन बाद क्या हो रहा है ये। पहले अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश, शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड बात हम कर रहे थे ब्रह्मास्त्र की।

सो ब्रह्मास्त्र का जो पार्ट वन है वो 2022 में रिलीज हुआ था जब मैं कॉलेज में थी एंड मैंने सोचा था कि मैं जर्नलिस्ट बनूंगी, आरजे बनूंगी, तब मैंने ये सपना देखा था। मैं जो है आरजे बन गई और आरजे बने हुए मुझे 2 साल हो गए हैं, लेकिन ये मूवी का जो है सेकेंड पार्ट नहीं बन पाया। सो आर्यन मुखर्जी जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा था कि इस मूवी के जो बाकी के दोनों पार्ट हैं, यानी पार्ट सेकेंड और पार्ट थर्ड जो है, वो बहुत साथ में जो है शूट किया जाएगा एंड आसपास रिलीज किया जाएगा। सो अगर मैं एस्टिमेटेड रिलीज डेट की बात करूं, सो दिसंबर के एंड में पार्ट टू जो है उसके रिलीज होने की बात कही गई थी एंड 2027 के शुरुआती महीनों में जो है इसका पार्ट थ्री रिलीज होना था। लेकिन जिस हिसाब से अभी तक कोई टीजर नहीं आया, ट्रेलर नहीं आया, मुझे नहीं लगता कि ये मूवी जो है 2026 में हमें देखने को मिलेगी। काफी सारी चीजें बदल गई हैं यार, मतलब एक्टर्स जो है उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, लेकिन अभी तक इस मूवी का पार्ट टू नहीं बना, कुछ झलक भी देखने को नहीं मिली। अब बताइए यार, शाहरुख खान को देखने के लिए मैंने इतना इंतजार किया था, फिर उन्हें ब्रह्मास्त्र में फाइनली मैंने देखा इतने सालों बाद एंड अब मैं वेट नहीं कर सकती यार शाहरुख खान को, रणबीर कपूर को, आलिया भट्ट को साथ में देखने के लिए। एंड यही तो वो मूवी है जिसमें हमें जो है ये एकदम पक्का हो गया था कि हाँ रणबीर एंड आलिया डेट कर रहे हैं, उसी के बाद उनकी शादी भी हो गई थी। ओ माय गॉड नॉस्टैल्जिक। वैसे बात कर लेते हैं हमारे रिकमेंडेशन वाले सेगमेंट की। वादे के अनुसार मैं आपको एक मूवी रिकमेंड करने वाली हूँ कि ऐसी कौन सी मूवी है जो अब देखकर जो है एंजॉय कर सकते हैं। सो मूवी का नाम भी थोड़ा सा फन है, मूवी का नाम है मर्द को दर्द नहीं होता। 2018 की ये मूवी है, इसमें जो है एक आदमी की स्टोरी के अराउंड जो है पूरी मूवी रिवॉल्व करती रहती है, जिसे जो है दर्द नहीं होता है, जिसकी हड्डियां नहीं टूटती हैं, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चोट से। सो एक पोएटिक वे में देखा जाए तो उसमें जो है ये दिखाया गया है कि किस तरीके से एक जो मैन है वो सारे जो है प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर ले लेता है, लेकिन प्रॉब्लम कभी दिखाता नहीं है। लेकिन बहुत ही लिटरल तरीके से इसको दिखाया गया है। अगर मैं एक्शन सीक्वेंसेस की बात करूं तो टिपिकल बॉलीवुड से हट के मार्शल आर्ट्स के तौर पर जो है दिखाया गया है एंड ये काफ़ी डिफरेंट चीज़ लगती है, काफ़ी आपको अट्रैक्ट करेगी, काफ़ी आपको मज़ा आएगा ये देखने में। एंड अगर मैं बाकी चीज़ों की बात करूँ तो नॉस्टैल्जिक है ये मूवी और परफॉर्मेंस जो है वो बहुत इनक्रेडिबल है जितनी भी एक्टर्स हैं उन सब की एंड बहुत ही अपसर्ड सी कॉमेडी आपको इसमें मिलेगी। मतलब आपको ऐसे बोरियत नहीं होगी, ऐसा लगेगा कि हाँ यार ठीक है, फन है, इसको चलने दो, रुकनी नहीं चाहिए। नेटफ्लिक्स पे आपको देखने को मिल जाएगी, एक बार जरूर देखना मर्द को दर्द नहीं होता। 2018 की ये मूवी है। 3311063 पर आकर आप मुझे बता सकते हैं अगर ये मूवी आपने ऑलरेडी देखी हुई है या देखने का प्लान करने वाले हो तो एक बार हेड्स अप दे दो, पता चल जाएगा कि मेरा रिकमेंडेशन आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। बाकी अगर आपने कोई ऐसी मूवी देखी हो जो आप चाहते हैं कि यार कशिश ये वाली मूवी ना सबको रिकमेंड कर दो, तो वो भी आप मुझे आके बता सकते हो 3311063 पर। फिलहाल मैं जाती हूँ, ऑल अ फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आर का जो है वक्त हो गया है। सो ये गाना एंजॉय करो और आपकी कशिश के साथ कहते रहो जियो बिंदास।

0: 26 million reals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 reals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.

देखिए तफरी तो मैंने कल की थी, मतलब भरी धूप में जो मैं बाहर घूमने के लिए गई हूँ और कतर के कोने कोने को मैंने नापा है, क्या ही बताऊँ मैं आपको। वीकेंड जो है वो वीकेंड जैसा लगा कल मुझे। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिफर, मैं हूँ आपकी कशिश, शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड देखिए यार, क्या होता है ना कि कतर में ऐसे तो मैं बहुत सारी जगह ऑलरेडी जा चुकी हूँ, लेकिन स्पेशली किसी एक जगह जाना, वहाँ जाके फोटोज क्लिक करना इज अ मेजर थिंग। एंड मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को जो है एक अच्छी पिक्चर अगर उनकी हो जाए किसी जगह, तो फिर उस जगह जाना उनका सफल हो जाता है। खैर मेरी कल पिक्चर्स हो नहीं पाई उतनी अच्छे से, बिकॉज मैं आउटफिट उतना अच्छा नहीं पहन के गई थी। मतलब अच्छा था आउटफिट, लेकिन उतना अच्छा नहीं था जितना मुझे एस्थेटिक चाहिए था। कोई बात नहीं, पर मैं जगह देखकर आ गई हूँ, रे की पूरी करके आ गई हूँ। अब जाके वहां पे मतलब एस्थेटिक्स के अप्रोप्रिएट जो ड्रेस है वो मैं पहनूंगी एंड मस्त वाली फोटो लूंगी। आप मुझे अगर कुछ रिकमेंड कर सकते हैं कि ऐसी कौन कौन सी जगह है जहां मैं जाके अच्छा फोटोशूट करा सकती हूँ अपना, तो 3311063 पर अगर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, ऐसी जगह बताना जहां पर जो है लोग मुझे देखकर कहें वाओ वाओ वाओ वाओ। वैसे वाओ से याद आया, हार्डी संधू की आवाज में वाओ ट्रैक जो है आने वाला है आपके रेडियो सेट्स पर थोड़ी सी देर में, है जवानी जो इश्क होना है मूवी से। इसके बारे में जो है डिटेल में हम बात करेंगे कि ये जो गाना है ये कैसे बनाया गया है एंड किस तरीके से जो है इस गाने को शूट किया गया है। लेकिन इस गाने को पहले आप सुनिए, इंजॉय कीजिए उसके बाद में। एंड थोड़ी सी देर में फैशन के बारे में भी बातचीत जो है वो हम करने वाले हैं कि इन ट्रेंड में इस वक्त क्या कुछ है, यानी अगर आप शॉपिंग के लिए निकल रहे हैं तो क्या ऐसा ट्रेंडी चीज है जो आप खरीद सकते हैं, एंड कौन सी चीज है जो है वो इंस्टाग्राम पे इस वक्त वायरल चल रही है, इन पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये वाओ गाना इंजॉय कीजिए और कहते रहिए वाओ एंड जियो बिंदास।

0: जुबिन नौटियाल जी, कहाँ से लाते हैं इतना गम, कहाँ से लाते हैं आप इतना दुख अपनी आवाज में। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिफ पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त लेकर आ गई हूँ। एंड देखिए, आज की तारीख है 27th of June, स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 12:16। एंड आज मुझे याद आया कि मेरे एक दोस्त का बर्थडे है, और फिर मुझे याद आया कि जब मैंने उसे विश किया था तो उसने मुझे बताया था कि पता है मैं किसी बहुत ही स्पेशल इंसान से अपना बर्थडे जो है वो शेयर करता हूँ, एंड दैट्स प्राजक्ता कोहली। हाँ जी, प्राजक्ता कोहली को आप मोस्टली सेम के नाम से भी जानते हैं, जो एक बहुत ही बेहतरीन यूट्यूबर रही हैं। यूट्यूब के कुछ शुरुआती वक्त पे जहाँ पे फीमेल इन्फ्लुएंसर्स उतनी नहीं हुआ करती थी, तब प्राजक्ता ने जो है यूट्यूब चैनल शुरू किया था। एंड मैं बड़ी हुई हूँ प्राजक्ता का कॉन्टेंट देखकर, रिलेटेबली जो है इतनी रिलेटेबिलिटी इतनी ज्यादा थी प्राजक्ता के कंटेंट पे कि मैं क्या बोलूं। मम्मी को जाके दिखाती थी कि मम्मी देखो ये सबके घर में होता है, सिर्फ आप नहीं करते हो। प्राजक्ता ने अलग अलग मुकाम जो है लाइफ में हासिल किए, उन्होंने अपनी एक्टिंग से जो है सबको इम्प्रेस किया है, चाहे वो उनकी सीरीज हो मिस मैच, चाहे वो जुग जुग जियो मूवी हो, या फिर सिंगल पापा नाम की एक सीरीज जो है उसमें भी वो आई है। एंड जितनी बार वो स्क्रीन पे दिखी है उतनी बार सबको इम्प्रेस ही किया है। सो प्राजक्ता कोहली को रेडियो ऑलिव की पूरी फैमिली की तरफ से वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। एक बार जाके प्राजक्ता का कंटेंट जरूर से देखना, आप इंस्पायर होंगे, क्योंकि प्राजक्ता वो इंसान है जिसने अपने आप में इम्प्रूवमेंट दिखाया है, खुद पे काम किया है, शादी परफेक्ट टाइम पे की है, बुक लिख दी है, अभी वो कंटेंट पे काम कर रही है, सोशल मीडिया उन्होंने छोड़ा नहीं है, मूवीज भी कर रही है, एंड इस मतलब सेंसिबली हर चीज को करना अगर आपको सीखना है तो बस आपको प्राजक्ता से सीखना है। मैं और कुछ नहीं बोलना चाहती, मैं एक फैन गर्ल की तरह बिहेव नहीं करना चाहती, लेकिन प्राजक्ता को हैप्पी बर्थडे जरूर से विश करना चाहती हूँ। सो फ्रेश सी कूल सी विश जो है मेरे तरफ से प्राजक्ता को हैप्पी बर्थडे वाली। फिलहाल एक कूल सॉन्ग ऑफ द आरआर आपके रेडियो सेट पर, इस गाने को एंजॉय कीजिए। अगर बात करेंगे जरा फैशन की दुनिया में क्या कुछ खास हो रहा है,
1: रेडियो पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द।

मुझे याद है एक बार मैं अपनी एक ड्रेस पहन के ऑफिस चली गई थी इंडिया में, एंड वहां पे लोगों ने मुझे कहा था ये तो प्रेगनेंसी वाली ड्रेस है, तुम कैसे पहन सकती हो. मतलब प्रेगनेंसी का भी कोई यूनिफॉर्म होता है, ये मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था. वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिवर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त लेकर आ गई हूँ. फैशन ट्रेंड्स की हम बात करने वाले हैं, लेकिन एक ऐसा फैशन ट्रेंड है जिसको ना बहुत स्टीरियोटाइप कर दिया था कि भाई ये तो ना जितने भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज होते हैं जब वो अपनी प्रेगनेंसी रिवील कर रहे होते हैं तब ये पहनते हैं. पोल्का डॉट्स की मैं बात कर रही हूँ, वो जो क्यूट क्यूट बॉबी प्रिंट की बात करूँ मैं अगर, वो जो वो डॉट्स बड़े छोटे जो है होते हैं एक ड्रेस में, उसकी अगर मैं बात करूं तो वो जो है इन ट्रेंड वापस आ चुके हैं, एंड वो स्कर्ट्स में, शर्ट्स में, ड्रेसेस में हर जगह मुझे दिखाई दे रहे हैं. इवन डेनिम्स में अगर आप देखें तो भी पोल्का डॉट्स काफ़ी इन ट्रेंड है. सो अगर आप इंस्टाग्राम वर्दी अपनी पिक्चर्स लेना चाहते हैं तो पोल्का डॉट को एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए. आई एम डैम श्योर कुछ ना कुछ आपके वार्डरोब में रखा हुआ आपको ज़रूर मिल जाएगा जिसमें पोल्का डॉट्स होंगे. तो निकालिए उन्हें, इन ट्रेंड पिक्चर्स दीजिए, मुझे भी टैग कर सकते हैं आप 3311063 पर, आप फोटोज भी भेज सकते हैं. रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम हैंडल पर आप जाएंगे तो सभी आरजेस वहां पर आपको मिल जाएंगे. अमेजिंग कंटेंट हम भी वहां क्रिएट कर रहे हैं, फैशन कंटेंट भी क्रिएट कर रहे हैं. सो आइए जल्दी से फॉलो कर लीजिए, फिलहाल एक अमेजिंग वाला गाना इंतजार कर रहा है आपका आपके रेडियो सेट्स पर. सो स्टे ट्यून्ड रहिए एंड आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास.

0: तो नहीं कर रहा है ये कहने का, लेकिन कहना पड़ेगा और मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि वक्त हो गया है मेरे यहाँ से जाने का, है ना, आपसे विदा लेने का।
1: 106.3 रेडियो ऑलिव पर मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो, आप मेरे साथ एंजॉय कर रहे थे, लाइफ मस्त है, लेकिन अब मेरे यहाँ से जाने का वक्त हो गया है। कल वापस इसी वक्त पे आपसे मिलने के लिए आऊंगी फैशन की, स्पोर्ट्स की, मूवीज की, बहुत सारी बातें लेकर, सो आना बिल्कुल मत भूलना। फिलहाल अभी मैं चलती हूँ, आपसे वही कहना चाहूंगी जो हर रोज कहती हूँ कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खाना खाते रहिए, पानी पीते रहिए, गाड़ी धीरे धीरे हौले हौले चलाइए, हाइड्रेशन का ध्यान रखिए एंड मेरी जान सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल मत भूलना, और आपकी कशिश के साथ कहते रहना जियो, पिंडा, टाटा, बाय बाय।

0: Radio Olive 106.3 FM Gio Bendaz.
1: A ring for the newly married, cute little bangle for the newborn.
2: Arey yaar, holiday season is here aur phir wahi gifting contention. फिर मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्डन समर के साथ आइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस और सुनो देयर इज मोर With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
0: Olive Music Marathon. Ek ghanta. Non-stop back-to-back gaane.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by.
2: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के इन एसोसिएशन विद
3: दोहा बैंक
2: मेक शॉपिंग मोर रिवॉर्डिंग गेट अ 500 कतरी रियाल लुलू वाउचर विद योर न्यू दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड जस्ट स्पेंड 1 कतरी रियाल टू अनलॉक अप टू 5% रिवॉर्ड्स अप्लाई बिफोर जून 30th TNC apply.

You're listening to Radio Olive 106.3 FM, Tanisha KG, aapke saath Olive Recharge lekar a very good afternoon, meri jaan. 27th of June, mahina khatam hone wala, by the way, aur Saturday ka din. Kaisa gaya aapka weekend, ye janna chahungi main. To फटाफट से आ जाओ 3311063 पर मैसेज करके बताओ क्या क्या किया, सब विस्तार से जानना चाहती हूँ मैं. मैं भी बताऊंगी ना, आई विल शेयर व्हाट आई डिड ऑन माई वीकेंड. तो पहले आपकी बारी, क्योंकि आपको पता है आप बहुत इंपॉर्टेंट हो. सो पहले आपकी सुनी जाएगी, उसके बाद मैं अपनी सुनाऊंगी, ठीक है? आ जाओ फटाफट से. यू कैन ऑल्सो कॉल बाय द वे 4444106 पर, और ढेर सारी बातें करनी है. बहुत कमाल कमाल के गाने लाइंड अप है, मजा ही आने वाला है. एकदम सैटरडे का ये जो दोपहर है, फुल ऑन माहौल बन जाएगा यहाँ पे. सो बने रहिए मेरे साथ और कहते रहिए जियो बिंदास मेरी जान.

0: इन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलीनियर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स। कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: मैं हूँ सारिका।
3: आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3।
4: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर 1 एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by.
2: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के इन एसोसिएशन विद
3: दोहा बैंक
2: मेक शॉपिंग मोर रिवॉर्डिंग गेट अ 500 कतरी रियाल लुलू वाउचर विद योर न्यू दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड जस्ट स्पेंड 1 कतरी रियाल टू अनलॉक अप टू 5% रिवॉर्ड्स अप्लाई बिफोर जून 30th TNC apply.

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio Olive on 106.3 FM. Tanisha, आपके साथ Olive Recharge चल रहा है यहाँ पर. और एक बहुत important बात आपसे मुझे कहनी थी कि जिंजर को कहते हैं अदरक, ठीक है? जिंजर को कहते हैं अदरक. Good days are coming मेरी जान, तो थोड़ी सी ठंड तो रख, सबर करो, कर्म करते जाओ, फल आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा. और फिलहाल मुझे मैसेज करो 3311063 पर. सेंडिंग कूल सॉन्ग ऑफ द आवर फॉर यू, स्टे ट्यून्ड एंड जुबिन बिंदास मेरी जान.
0: कूल सॉन्ग
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है
0: कूल सॉन्ग.

0: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडो ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो.
1: हमने लगा और हो जा रिचार्ज.
2: Olive Recharge Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas.
1: Olive Recharge.
3: This hour is brought to you by.
0: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ. पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के. इन एसोसिएशन विद
4: दोहा बैंक
0: मेक शॉपिंग मोर रिवॉर्डिंग. गेट अ 500 कतरी रियाल लुलू वाउचर विद योर न्यू दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड. जस्ट स्पेंड 1 कतरी रियाल टू अनलॉक अप टू 5% रिवॉर्ड्स. अप्लाई बिफोर जून 30th. TNC apply.

0: दनिशा
1: ऑलिव रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर एंड यू नो वेदर काफी कहर बरसा रहा है इस वक्त, तो बहुत ज्यादा गर्मी हो चुकी है. सो इस सोरिंग टेम्परेचर में कैसे अपना ख्याल रखना है अगर आप आउटडोर हैं? ड्रिंक कूल वाटर एवरी 15 टू 20 मिनट्स, टी कॉफी एनर्जी ड्रिंक्स या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हैं उन्हें थोड़ा अवॉइड करें, ब्रेक लेते रहें इन अ शेडी और अ कूल प्लेस, हेल्दी खाना खाएं और लाइट खाना खाएं, विच आई ऑल्सो कीप टेलिंग यू कि ज्यादा ऑयली ना हो, ज्यादा हैवी फूड ना खाएं, वेयर लाइट एंड लूज क्लोदिंग, बहुत कंफर्टेबल रहेगा एंड कीप योर हेड कवर्ड व्हेन आउटडोर्स. यस, इट इज तो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इस धूप में ना हेडेक बहुत ज्यादा हो रहा है एंड सो मेनी पीपल आर सफरिंग फ्रॉम दैट. सो प्लीज अपना ख्याल रखें मेरी जान, क्योंकि आप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं. जी हाँ, स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास.

0: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। Visit Malabar Gold and Diamonds today.
1: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM. Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM. And Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
2: Olive Recharge. Radio Olive 106.3 FM par. Jio Bindas.
3: Olive Recharge.
4: This hour is brought to you by.
5: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के। इन एसोसिएशन विद
6: दोहा बैंक
5: मेक शॉपिंग मोर रिवॉर्डिंग। गेट अ 500 कतरी रियाल लुलू वाउचर विद योर न्यू दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड। जस्ट स्पेंड 1 कतरी रियाल टू अनलॉक अप टू 5% रिवॉर्ड्स। अप्लाई बिफोर जून 30th। TNC apply.

थी तब मैंने पूछा था कि कैसा रहा आपका वीकेंड, क्या किया आपने, तो यहाँ पे मुझे कुछ मैसेजेस आए, पीपल आर टेलिंग कि हम बाहर गए थे शाम को, थोड़ा निकले थे, कुछ लोग फीफा में बिजी थे, मैचेस देख रहे थे. देन सम आर सेइंग कि कुछ नहीं, ऐसे ही बस बिंज वॉच किए चीज़ें, बेसिक फोन डूम स्क्रॉल किया, किसी ने बुक्स पढ़ी हैं. ये सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा. मैंने क्या किया, वही यूजुअल, लॉन्ड्री कर ली, रूम क्लीन कर लिया, एंड ग्रोसरी स्टॉक कर ली, थोड़ा सा खाना कुक कर लिया, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है. एक्चुअली टाइम की बात नहीं है, इट्स जस्ट टू लेजी बिकॉज ऑफ द वेदर. इतनी गर्मी लगती है ना किचन में घुसते ही, एसी का भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता है, तो मुझे लगता है नहीं यार ये तो नहीं हो पाएगा. पर इस बार मैंने हिम्मत करके ये काम कर लिया है मेरी जान, तो कह दो तनिषा आई एम प्राउड ऑफ यू. आज हम मैसेज कर दो 3311063 पर एंड स्टे ट्यून्ड टू रेडियो ऑल इट.

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by.
2: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के इन एसोसिएशन विद
3: दोहा बैंक
2: मेक शॉपिंग मोर रिवॉर्डिंग गेट अ 500 कतरी रियाल लुलू वाउचर विद योर न्यू दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड जस्ट स्पेंड 1 कतरी रियाल टू अनलॉक अप टू 5% रिवॉर्ड्स अप्लाई बिफोर जून 30th TNC apply.

0: Jonas. All Eftersno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network. Radio, I'm the number one. Hum le laga aur ho ja recharge.
1: Olive Recharge. Radio Olive 106.3 FM par. Jio Bindas.
2: Olive Recharge.
3: This hour is brought to you by.
4: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाई फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के इन एसोसिएशन विद
5: दोहा बैंक
4: मेक शॉपिंग मोर रिवॉर्डिंग गेट अ 500 कतरी रियाल लुलू वाउचर विद योर न्यू दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड जस्ट स्पेंड 1 कतरी रियाल टू अनलॉक अप टू 5% रिवॉर्ड्स अप्लाई बिफोर जून 30th TNC apply.
6: We are the sounds of the streets.

0: listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas
1: Olive laga aur ho ja recharge Olive recharge
0: Olive recharge Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas
1: Olive recharge
2: This hour is brought to you by.
3: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के इन एसोसिएशन विद
4: दोहा बैंक
3: मेक शॉपिंग मोर रिवॉर्डिंग गेट अ 500 कतरी रियाल लुलु वाउचर विद योर न्यू दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड जस्ट स्पेंड 1 कतरी रियाल टू अनलॉक अप टू 5% रिवॉर्ड्स अप्लाई बिफोर जून 30th TNC apply. Shining.

0: Tanisha.
1: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha, aap ke saath Olive Recharge chal raha hai yahan par.
2: TikTok
1: में बात करते हैं AirPods की. So जितने भी iPhone users हैं and they also use AirPods, तो क्या आपको पता है, मतलब obviously जब हम फोन पे बात कर रहे हैं AirPods लगा कर, तब तो वो माइक का काम कर ही रहा है, but you can also record अलग से as a microphone भी आप उसको use कर सकते हैं. So you just have to go to your settings और microphone वाले option में जाकर आपने अपना AirPod को select कर देना है और कौन सा वाला use करना चाहते हो, whether right or left वाला, वो select करना है और बस फिर उसे कान से निकाल कर जो उसका एंड है ना, वहाँ पर आप बोल कर रिकॉर्ड कर सकते हैं चीज़ें. एंड इतनी क्लियर और अमेजिंग क्वालिटी आती है. आई सॉ वन वीडियो एंड देन आई ट्राइड इट. इट एक्चुअली वर्क्स रियली वेल. यस, तो ट्राई करके देखिएगा और बताइएगा काम कर रहा है कि नहीं. और सुनते रहिए रेडियो ऑल ऑफ जियो बिंदास.

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063. Olive Recharge Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas Olive Recharge.
1: This hour is brought to you by
2: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के इन एसोसिएशन विद
3: दोहा बैंक
2: मेक शॉपिंग मोर रिवॉर्डिंग गेट अ 500 कतरी रियाल लुलू वाउचर विद योर न्यू दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड जस्ट स्पेंड 1 कतरी रियाल टू अनलॉक अप टू 5% रिवॉर्ड्स अप्लाई बिफोर जून 30th TNC apply

तनीषा आपके साथ ऑल रीच आउट चल रहा है यहाँ पर, और भाई दोहा बैंक और लुलू आपके लिए जो कमाल ऑफर लेकर आया ना, इट विल मेक योर शॉपिंग मोर rewarding and amazing. जी, all you have to do is just apply for Doha Bank Lulu Mastercard Platinum Credit Card, or you can get up to 500 रियाल का Lulu Shopping Voucher. And not just that, जब भी आप Lulu Store पर spend करेंगे, आपको 5% savings मिलेंगी Lulu Points के form में, तो वो आप बाद में redeem कर सकते हैं. Also, you can enjoy airport lounge access, my book offers, dining deals or lifestyle privileges. बस कार्ड एक्टिवेट करना है लुलू पर, एक रियाल मिनिमम आपने स्पेंड करना है और रिवॉर्ड्स का मजा ले सकते हैं. दैट्स ऑल. दिस ऑफर इज वैलिड टिल 30th जून ओनली, सो फटाफट से जाइए और अप्लाई कीजिए फॉर दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड, एंड अपनी शॉपिंग को और भी मजेदार बनाइए. और सुन रही है रेडियो ऑल ऑफ जियो बिंदास.

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by.
2: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के इन एसोसिएशन विद
3: दोहा बैंक
2: मेक शॉपिंग मोर रिवॉर्डिंग गेट अ 500 कतरी रियाल लुलू वाउचर विद योर न्यू दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड जस्ट स्पेंड 1 कतरी रियाल टू अनलॉक अप टू 5% रिवॉर्ड्स अप्लाई बिफोर जून 30th TNC apply.

तनीषा के साथ हैं आप रेडियो 106.3 एफएम पर. ऑलिवरी चार्ट चल रहा है यहाँ पर और वक्त हो चुका है मेरे आपके हम सब के फेवरेट जी हाँ लेम जैम्स का टाइम हो गया. और लेम जैम्स का आज का मेरा सवाल है, रिपीट कर रही हूँ बाय द वे मैं ये क्वेश्चन, जस्ट टू चेक वेदर आपको याद है या नहीं. व्हाट डू यू कॉल गार्ड्स स्टैंडिंग आउटसाइड सैमसंग स्टोर्स? सैमसंग के स्टोर्स के बाहर खड़े गार्ड्स को आप क्या बोलेंगे? ठीक है, लॉजिकल आंसर नहीं देने का है, दीजिए लेम जवाब क्योंकि ये है लेम सवाल. 3311 1063 पर मैसेज कीजिए या फिर कॉल कर दीजिए 4444 1063 पर. और सुनते रहिए रेडियो ऑल ऑफ जियो बिंदास मेरी जान.

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by.
2: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के इन एसोसिएशन विद
3: दोहा बैंक
2: मेक शॉपिंग मोर रिवॉर्डिंग गेट अ 500 कतरी रियाल लुलू वाउचर विद योर न्यू दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड जस्ट स्पेंड 1 कतरी रियाल टू अनलॉक अप टू 5% रिवॉर्ड्स अप्लाई बिफोर जून 30th TNC apply.

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha, aapke saath Olive Recharge chal raha hai ab. So Lame Jams ka aaj ka mera sawal tha ki what do you call guards standing outside Samsung stores? So a few have given me the correct answer already. Kuch log nahi guess kar paaye hain. To ek aur mauka dete hain. Chaliye, bataen ki jo guards Samsung store ke bahar khade rehte hain, unhe hum kya kahenge? बहुत फनी है यार ये. एंड दोज हू हैव गॉट द आंसर, आई एम प्राउड ऑफ यू मेरी जान. एंड एक और मौका है आपके पास, तो फटाफट से गेस कीजिए. अभी कुछ देर में लौट कर आके फिर मैं जवाब बता दूंगी, ठीक है? 3311 1063 या फिर कॉल कर दें 4444 1063 पर. और सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
2: लगा और हो जा रिचार्ज।
0: ऑलिव रिचार्ज, रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
2: ऑलिव रिचार्ज।
3: This hour is brought to you by.
4: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के। इन एसोसिएशन विद
5: दोहा बैंक,
4: मेक शॉपिंग मोर रिवॉर्डिंग। गेट अ 500 कतरी रियाल लुलू वाउचर विद योर न्यू दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड। जस्ट स्पेंड 1 कतरी रियाल टू अनलॉक अप टू 5% रिवॉर्ड्स। अप्लाई बिफोर जून 30th। TNC apply.

प्राउड तो मैं बहुत हूँ देखो आप लोगों पे, जी हाँ दिल खुश कर देते हो आप मेरा। यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम, तनीषा आपके साथ। ऑल ओवर रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर और सब ने सही जवाब दे दिया है, एक और मौका दिया और सब समझ गए कि अरे हाँ ये तो ये है। सो यस द करेक्ट आंसर इज गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी। जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया उन्हें बता दूं कि सवाल क्या था बेसिकली, व्हाट डू यू कॉल गार्ड्स स्टैंडिंग आउटसाइड सैमसंग स्टोर्स? यस, गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी। जब मैंने पहली बार ये पढ़ा एंड देन आई आस्क्ड पीपल अराउंड मी, उनकी जो शक्लें बनी थी ना वो मैं भूल नहीं सकती। इट वॉज सो फनी एंड आई डोंट नो वाई बट आई गेट दिस वेरी गुड वाला फीलिंग जब वो गेस नहीं कर पाते और फिर जब वो आंसर सुनते हैं वो मुझ पर डिसअपॉइंट हो चुके होते हैं, वो गिवअप कर चुके होते हैं कि नहीं तनीषा तुम रहने दो, क्योंकि कौन गेस कर पाता है ऐसे। आप हो मेरी जान, जी हाँ आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू। और इसी बात पे एक बहुत बढ़िया गाना आपके लिए आ रहा है ओनली ऑन रेडियो 106.3 FM, जी हो बिंदास मेरी जान।

0: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: A ring for the newly married, cute little bangle for the newborn.
2: अरे यार, holiday season is here और फिर वही gifting का tension. तो फिर मालबार gold and diamonds, gold and summer के साथ आइए free cash vouchers on diamond and precious gem jewellery purchases. Plus, exchange your gold jewellery and upgrade to the latest designs without any loss. और सुनो, there's more. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
0: Olive Recharge. Radio Olive 106.3 FM par. Jio Bindas.
3: Olive Recharge.
4: This hour is brought to you by.
5: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के इन एसोसिएशन विद
6: दोहा बैंक
5: मेक शॉपिंग मोर रिवॉर्डिंग गेट अ 500 कतरी रियाल लुलू वाउचर विद योर न्यू दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड जस्ट स्पेंड 1 कतरी रियाल टू अनलॉक अप टू 5% रिवॉर्ड्स अप्लाई बिफोर जून 30th TNC apply.

0: एवरीवन, मैं हूं अरमान मलिक.
1: नंबर 106.3 FM रेडियो ऑलिव जियो बिंदास.
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर 1 एशियन रेडियो नेटवर्क.

0: ब्यूटीफुल ट्रैगल न्यू ऑन रेडियो 106.3 FM तनीषा आपके साथ ऑल एवरी चार चल रहे हैं यहाँ पर और अब वक्त हो चुका है मेरे जाने का मेरी जान. मिलेंगे कल दोपहर 2 बजे नए हफ्ते की शुरुआत फुल एंथुजियाज्म और पॉजिटिविटी के साथ. ऐसी उम्मीद करती हूँ मैं आके हालचाल पूछूंगी और अगर अभी तक अपने लिए वक्त नहीं निकाला है थोड़ा सा वीकेंड और भी बाकी है निकाल लो यार. बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सेल्फ रिफ्लेक्शन में बैठना क्योंकि हमसे ज़्यादा बेहतर हमें कोई नहीं समझ सकता. ठीक है, सो अपने साथ थोड़ा सा वक्त निकालो और बाकी चिल करो यार. टेक इट वन डे एट ए टाइम. इतना स्ट्रेस नहीं लेते होते कि आगे क्या होगा, अगले हफ्ते क्या होने वाला है, देखा जाएगा जो होगा. ठीक है, अभी आप रेडियो ऑलिव सुनो क्योंकि बढ़िया गाने चल रहे हैं और कहते रहो जियो बिंदास.
1: Radio

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं। यहाँ हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है। यहाँ हर चोट एक मेडल है। हारना मना है और डरना गुनाह है। यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है। और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन। फीफा की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ओलिव
1: इन एसोसिएशन विद।
0: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स।
2: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज,
0: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर।

भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो।

सच है कि आप भी मेरा इंतजार कर रहे थे यार। हमारे लिए तो ऑफ कोर्स हो चुकी है और आज का पूरा दिन भी निकल चुका है और सिमरन कौर आ चुकी है। 5 से लेके 9 बजे तक रहूंगी आपके साथ। इन शॉर्ट 4 घंटे हो रही है, बेबी वीकेंड ओवर हो चुका है। आपने वीकेंड पे क्या किया और कैसा रहा आपका आज का दिन बताइएगा मुझे 3311063 पर। मेरा वीकेंड कैसा रहा मैं उसके बारे में आपको वापस लौट के बताऊंगी। अरे अभी तो आए हैं, सांसे वांसे ले ले। सुनते रहो रेडियो ऑलिव गोल, कहते रहो जियो बिंदास।

0: इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं। यहाँ हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है। यहाँ हर चोट एक मेडल है। हारना मना है और डरना गुना है। यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है। और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन। फीफा की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ऑल एयर
1: इन एसोसिएशन विद।
0: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स।
2: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज,
0: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर।
3: हेलो लिसनर, मेरा नाम है राजपाल यादव और आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।
0: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
4: रेडियो ऑलिव नंबर वन।
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
6: सिमरन के साथ
7: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद। बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
8: लुलू हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: कैसा रहो मेरा वीकेंड बता दियो यार। सुबह तक मेरा मन था, दोपहर तक मेरा मन था कि यार मेरे को बाहर जाना है घूमना फिरना, लेकिन ना शाम होते होते ना मेरा मन कर रहा था कि नहीं यार मेरे को अपना मी टाइम जो है वो चाहिए, क्योंकि हफ्ता भर बहुत हो जाता है कभी कभी, और ये वाला हफ्ता जो मेरा लास्ट वाला हफ्ता था काफी एग्जॉस्टिंग रहा था, जहां पर मेरे माइंड की बैंड बजी हुई थी, मुझे लग रहा था कि अभी मुझे थोड़ा सा अपने लिए टाइम जो है वो चाहिए। जब आपकी बॉडी इस तरह की चीजें मांगती है तो आपको दे देनी चाहिए, क्योंकि इस बॉडी से आपको बहुत सारे काम है। सो मेरे को थर्सडे शाम को लगा तो मैंने जो भी मेरा प्लान था बाहर जाने का, मैं सारे वो प्लान जो थे वो कैंसिल कर दिए। घर गई, मस्त अपना जो फेवरेट खाना था वो खाया मैंने, एंड आजकल पता नहीं मुझे समोसे खाने की चुल मची हुई है, दो आई डोंट लाइक समोसा एट ऑल, पहले आप लोगों को पता है, बट मैंने समोसा खाया। भैया को बोला भाई मिर्ची नहीं डालनी है, क्योंकि मेरे से मिर्ची वाला समोसा जो है खाया नहीं जाता, वो खाया, चाय पी मैंने, एंड सीरीज देखी, कुछ तो सीरीज मैं देख रही थी, कोई मूवी देख रही थी, एंड उसके बाद फ्राइडे में मेरा मन था कि मैं अपना फेवरेट वाला प्रोटीन वाला पास्ता जो है वो कुक करूं, बट वो संभव मैं नहीं कर पाई, बहुत ज़्यादा लेजी हो गया। एंड आफ्टरनून में मैं एक ऐसी चीज़ करी जिससे मुझे बचपन की याद आ गई, आफ्टरनून में मैंने वो एकदम ठंडा ठंडा मीठा मीठा वाटरमेलन खाया यार, उसके ऊपर हल्का सा काला नमक छिड़क के, भाई बचपन याद आ गया, छुट्टी वाले दिन खाया करते थे समर में, और इस बार मैंने खाया तो बड़ा मज़ा आया, दो मुझे काटना नहीं आता है तो फिर बड़ी मुश्किल से जो भी था मैंने किया, एंड यस बहुत ही बढ़िया वाला रहा, शाम तक भी बहुत ही लेजी थी, कहीं नहीं निकली मैं। सो या कुल मिला के मैंने अपनी बॉडी को अच्छा सा रेस्ट दिया, और जो चाहा वो खाया, जो चाहा वो किया, रेस्ट भी की, और बहुत सारी छींकें भी मारी, क्योंकि ये कोल्ड जो है ना वो गर्मी वाला और ये धूल मिट्टी वाला काफी ज्यादा खराब करता है। सो आपका वीकेंड कैसा रहा, 3311063 पे बताइए। जी ओ बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है

0: 2026 million reals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals cash prizes.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 reals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Iske swag pe munde jaate hain dil haar ke. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. गदर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: सो आज कौन कौन से मैचेस उसके बारे में बात करते हैं। कुछ मैचेस तो सुबह सुबह हो जाते हैं, जो अपने टाइम पे मैचेस जो हैं वो बचे हुए हैं। अगर मैं देखूं तो 5 बजे दोहा टाइम के हिसाब से 2 मैचेस हैं, पनामा एंड इंग्लैंड के बीच में, क्रोएशिया और घाना के बीच में 5 बजे मैचेस होने वाले। लेकिन 7:30 बजे कोलंबिया और पोर्चुगल के बीच में मैच होने वाला है। उसके बाद 7:30 एक और मैच है कांगो और उज्बेकिस्तान के बीच में। फिर रात के 10 बजे 2 मैचेस हैं अर्जेंटीना एंड जॉर्डन के बीच में, अल्जीरिया एंड ऑस्ट्रिया के बीच में। सो या कौन से मैच के लिए आप सुपर एक्साइटेड है, ले मी नो। ये खेल है, खेल है ब्लॉकबस्टर।
1: In association with download the City Exchange mobile app now to send money quickly at the best exchange rates. Also, Palm Swiss Gold Bars are now available at the best price at City Exchange, your trusted remittance partner.

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। क्या आप एक प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर हैं? तो अब अपनी स्किल्स को प्रूफ करने का वक्त आ गया है। हासिल कीजिए एक ऑफिशियल कारामा सर्टिफिकेशन, पाइए अपना लाइसेंस जो आपके लिए कतर में नए जॉब अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल देगा। एक ऐसे सर्टिफिकेट के साथ जो आपके ब्रिलियंस और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का कमिटमेंट शो करता है। इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए, अभी रजिस्टर कीजिए और बन जाइए अपने फील्ड के टॉप कॉन्ट्रैक्टर्स और टेक्नीशियंस में से एक। बस विजिट कीजिए कारामा की वेबसाइट www.km.qa और खुद को कीजिए सर्टिफाइड, बनिए सर्टिफाइड के साथ बनिए।
1: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया, यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के
3: साथ। Zabardast evening, make you drive golden with.
4: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
5: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just be

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरेडू ऐप पर. Experience more with ओरेडू.

0: नहीं लग रहा कि इस बात में मैं कैसे रिएक्ट करूं।
1: रेडियो ऑलिव पर व्हाट द वायरल क्या बात है आरजे सिमरन के साथ व्हाट द
0: वायरल ये बात। और मुझे लगता भी नहीं है कि इस बात पे मुझे रिएक्ट करना चाहिए। सिमरन कौर है आपके साथ। और कैंसर एक ऐसी चीज है, हम सबको पता है कि यार ये मतलब कभी इंसान किसी दुश्मन को भी जो है ये ना मिले। एंड एक मैं इसके बारे में पढ़ रही थी, कैंसर की लास्ट स्टेज में जो लड़का था, एक 27 साल का आई गेस, वो यू नो लास्ट स्टेज में था और उसकी फैमिली को उसने बताया कि उसकी आखिरी ख्वाहिश जो है वो इस दुनिया से जाने से पहले क्या है। सो उसने बोला कि वो यू नो देखना चाहता है कि ऑर्केस्ट्रा एक वो जो है उसके फाइनल विषय कि वो एक ग्रैंड ऑर्केस्ट्रा इवेंट जो है होस्ट करना चाहते हैं जहां पे बहुत सारे डांसर्स हों, है ना, और मनी जो है पैसे जो है वो लुटाए जाए एंड ऑल। सो उसकी फैमिली ने उसकी लास्ट विश को पूरा किया, जिस तरह से एक ऑर्केस्ट्रा जो था वो इवेंट ऑर्गेनाइज किया, 7 लाख जो थे वो फैमिली ने ऑलमोस्ट इस इवेंट पे जो है वो खर्च कर दे उसकी लास्ट जो है वो विश के लिए। सो या इसके ऊपर नो कमेंट्स यार, लेकिन यस कभी भी किसी को ऐसी सिचुएशन लाइफ में ना देखनी पड़े। इतने बोलूंगी, हेल्दी लाइफस्टाइल रखो यार, सब बढ़िया रहो और खुश रहो। सिमरन गौरियाव के साथ जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की
1: तो फिर सोचना क्या अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो आज ही शुरू करो सेविंग्स कमर्शियल बैंक सेव एंड विन
3: सलाम प्रणाम नमस्कार वणक्कम मैं हूं जैकी श्रॉफ रेडियो 106.3 जियो बिंदास
0: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क रेडियो ऑलिव
4: नंबर वन इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
5: आरजे सिमरन के साथ
6: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ
7: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी
8: लुलु हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप

0: की ना आपको लगता है कि दुनिया खत्म है, जिंदगी खत्म है। ये जो ऊपर वाला है ना, कभी कभी ऐसे खेल खेलता है कि बेटा जब तक मैं नहीं बनूंगा तब तक कुछ एंड नहीं हो सकता। मैं क्या जी सुनियो कि हाल चाल सत श्री अकाल सिमरन कौर आपके साथ। ब्राजील की एक न्यूज में आपको बता दी हूँ, जिसमें क्या था कि एक कछुआ, एक टॉर्टोइस जो था, वो एक कंस्ट्रक्शन चल रही थी, वो कहीं अंदर एक फ्लोर के अंदर जो था सील्ड ट्रैप हो गया था, ठीक है। 10 साल वो वहीं पे ट्रैप्ड रहा। आफ्टर 10 ईयर्स जब रिपेयरिंग का काम चल रहा था, देन दे गॉट टू नो, अरे भाई इसके अंदर तो टॉर्टोइस है। तो देखो उस टॉर्टोइस ने 10 साल जो है सर्वाइव किया, क्योंकि भाई जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा तब तक आपको कोई भी इस दुनिया से उठा नहीं सकता, खत्म नहीं कर सकता। सो यार बिलीव करो, सब ठीक हो जाता है। कभी कभी हमको लगता है कि हम जिंदगी में फंसे हुए हैं यार, कुछ नहीं बचा है, लेकिन ऊपर वाले को पता है यार, वो अपने आप टाइम आने पे सब सेट कर देगा। सिमरन कौर आपके साथ, जियो बिंदास, बस ब्रीद करना है और सबर करना है यार।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो Ooredoo ऐप पर. Experience more with Ooredoo.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tatkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Iske swag pe munde jaate hain dil haar ke. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ.
5: Zabardast evening, make you drive golden with.
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ.
4: Zabardast evening make you drive golden with.
5: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop.

जून ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है और जुलाई भी ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, अगस्त ऐसे निकल जाएगा कि हाँ सिमरन बर्थडे वीक है, मतलब बर्थडे मंथ है, बस फिर मौसम बदलने लग जाएगा यार। इसी उम्मीद में मैं जीती हूँ। लेकिन ये दो तीन महीने मौसम से कोई उम्मीदें मत लगाना, बस अपने आप को संभाल के रखना दोस्त, उतना ही है। सो आज के मौसम का हाल ये है कि दिन में जो टेम्परेचर था वो 43 डिग्री सेल्सियस फील्स लाइक तक पहुंचा हुआ था, कई लोगों को लगेगा कि 45 भी था लेकिन बहुत गर्म था। एंड मिनिमम टेम्परेचर आज का 30 डिग्री सेल्सियस है, ह्यूमिडिटी 13% है, विंड जो है 11 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से चल रही है। सो मेरी तरह वाटरमेलन खाइए, मस्कमेलन खाइए, ऐसे फ्रूट्स खाइए जो ही आपको हाइड्रेट कर सके, एंड पानी पीजिए। सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, करके दे रही है जियो बिंदास। We'll be right back.

0: ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ?
1: ਅੱਛਾ ਜੀ,
2: Gen Z decoded.
1: ऐसे ही क्या?
0: Decode कर दी God slang को. लॉक्ड इन. लॉक्ड इन जो है वो जेंजी स्लैंग में इसलिए यूज किया जाता है जब भाई आप एक ऐसे फेज में एंटर कर जाते हो जो कि बहुत ज्यादा इंटेंस है, जिसपे आपको बहुत ज्यादा फोकस रखना है, आपको डीप कॉन्सेंट्रेशन जो है वो करना है. लाइक आपकी कोई डेडलाइन है, यू नीड टू बी कम्प्लीटली लॉक इन. ओके, सो या इसके लिए ये वर्ड जो है वो यूज किया जाता है. अगर आपके पास कोई ऐसा जेंजी वर्ड है जो कि आपको लगता है यार काफी कूल है, शेयर करो मेरे साथ 3311063 पे. सिमरन कौर आपके साथ. मैं जी जी अविनाश.

0: इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं। यहाँ हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है। यहाँ हर चोट एक मेडल है। हारना मना है और डरना गुनाह है। यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है। और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन। FIFA की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ऑल एयर
1: इन एसोसिएशन विद।
0: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स।
2: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज,
0: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर।
3: हेलो नमस्कार, मम्मा मिया, मैं हूँ चंकी पांडे और आप सुन रहे हो मुझे रेडियो ऑल एयर।

0: जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गदर की नंबर वन आरजे सिमरन के
1: साथ। Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
2: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੁਣਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ महेश जी का मैसेज आया कहते हैं कि इंडिया से सिमरन तुमको एप्लीकेशन के थ्रू सुन रहा हूँ. थैंक यू सो मच यार, यही फायदा है हमारी एप्लीकेशन का. अगर आप कतर के बाहर हैं, ठीक है, या फिर कतर के अंदर हैं, किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आप गाड़ी में नहीं है, रेडियो नहीं है आपके पास, तो आपके पास एप्लीकेशन है. अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए रेडियो ऑलिव की एप्लीकेशन, फिर महेश जी की तरह आप इंडिया से सुन रहे हैं या कैनेडा से सुन रहे हैं, कतर के अंदर ही सुन रहे हैं, सो आप हमें बिना जो है वो टेंशन के सुन सकते हैं जब भी आपका मन करे. बॉलीवुड म्यूजिक जो है वो आपके लिए 24/7 ऑन है, और आप हमारे शोज जो है सुबह 6 से लेके रात के 11 बजे तक सुनते हैं, सो उसके बीच भी आप हमें कभी भी सुन सकते हैं. सिमरन कौर का शो जैसे अभी आप सुन रहे हैं, अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, फ्राइडे को छोड़ के आप मुझे हर रोज 5 to 9 जो है वो जबरदस्त इवनिंग्स में सुन सकते हैं. सो या हमारे सोशल मीडिया को भी फॉलो कर लीजिएगा, और भी बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी. सुनते रहिए रेडियो ऑलिव कौर, कहते रहिए जियो बिंदास.
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है. I'm gonna stay.

0: कहते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गदर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: डिपेंड करता है कि आपका सर्कल कैसा है।
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ
0: बहुत मैटर करता है। कुछ लोगों को आपने देखा है कि जब भी आप उनसे कोई बात करते हैं, अरे यार बिजनेस करना है, अरे यार ये करना है लाइफ में, अरे यार ये ना हो नहीं रहा, तो सामने अरे नहीं कुछ नहीं होता आजकल, तो कुछ नहीं हो रहा, अरे तो बिजनेस करेगा, अरे नहीं नहीं वो तो ऐसे हो जाएगा, अरे बहुत लोग नुकसान उठा रहे हैं, तू मत कर, ये रिस्क मत ले, और कुछ भी ना आप उनसे काम की बात कर लो या लाइफ की बात कर लो, उनके पास नेगेटिव ही है। आप अपने लव लाइफ की बात करो, उनके पास नेगेटिव होगा। तो ऐसे लोगों के पास बैठना, वहां पर आपका जो है वो ग्रो नहीं कर पाओगे आप, चाहे आप लाइफ में छोटा सा भी करने की सोच रहे हो और सामने वाला इंसान अगर वो बोलेगा हाँ भाई करके देख, तू रिस्क लेके देख कर, ऐसे लोग आपको आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं, चाहे वो वैसे हेल्प ना करें लेकिन मेंटली आपको जरूर हेल्प करेंगे। लेकिन क्या होता है कि अगर आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते, एटलीस्ट उसको मेंटली तो इतना स्ट्रांग करो कि भाई उसको आगे बढ़ने के लिए थोड़ा तो मोटिवेशन मिले। सो जो लोग आपको आपकी लाइफ में मोटिवेट नहीं कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है यार उनका। सो लाइफ में ऐसे लोग अपने आसपास रखिए जो आपको मोटिवेट करे एटलीस्ट मेंटली, क्योंकि वो सबसे बड़ी जरूरत है, बाकी इंसान अपने आप सब संभाल लेता है। सिमरन कौर आओगे साथ जियो बिंदास।

0: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। Visit Malabar Gold and Diamonds today.
1: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
2: Iske swag pe मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ।
4: Zabardast evening, make you drive golden with.
5: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

हाँ जी तैयार हो फिर? ऑल राइट सुनियो कि दादी की हालचाल सत श्री अकाल सिमरन कौर थोड़े नाल। और अब मेरा सारा ध्यान जो है वो मेरे व्हाट्सएप की स्क्रीन पे आ जाता है और मैं आप लोगों के नाम पढ़ना स्टार्ट करूंगी। लेकिन उससे पहले जितने भी लोग अभी मुझे सुन रहे हैं क्विकली आप अपना नाम लिख के मुझे व्हाट्सएप करिए। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 3311063। जी हाँ 3311063। इस नंबर पे सिर्फ और सिर्फ अपना नाम लिख के भेजिए। अगला गाना शुरू होने से पहले जितने भी नाम मुझे देखेंगे वो सारे नाम मैं बोलने वाली हूँ।

इम्तियाज जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, यूनुस जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, अबरार जी थैंक यू सो मच, नजीमुल्ला जी थैंक यू सो मच, फिलिप जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। किसी का नाम वैम्पायर क्यों लिख रहे हो यार, अपना नाम लिखो दोस्तों प्लीज, ऐसे इमेजिनरी नेम मत लिखो। रिमशा जी थैंक यू सो मच, रहमत जी थैंक यू सो मच, तेजिंदर जी थैंक यू सो मच, इमरान जी थैंक यू सो मच, हकीम जी थैंक यू सो मच, यम जी थैंक यू सो मच, इरफान जी थैंक यू सो मच, मुअज्जम जी थैंक यू सो मच, मकसूद जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, सामी जी थैंक यू सो मच, सतीश जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, राहुल जी थैंक यू सो मच, स्टैनली जी थैंक यू सो मच, जुनैद जी थैंक यू सो मच, नारायण जी थैंक यू सो मच, आशु जी थैंक यू सो मच, शिवांश जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, प्रताप जी थैंक यू सो मच, नैनू जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज, जसविंदर जी थैंक यू सो मच, फिलिप जी आपका नाम मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ, तुषार जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, जसविंदर जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, एंड दैट्स इट फॉर नाउ। जिन जिन लोगों के मैंने नाम ले लिया ना बेटा, सुन लिया आपने अपना नाम, आप थैंक यू लिख दो और साथ में अपना फेवरेट वाला इमोजी बनाना मत भूलना।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट. यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 FM.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: बिंदास।
0: इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं। यहाँ हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है। यहाँ हर चोट एक मेडल है। हारना मना है और डरना गुनाह है। यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है। और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन। फीफा की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ओलिव
2: इन एसोसिएशन विद।
0: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स।
3: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज,
0: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर।
4: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
5: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ओलिव पे।
6: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
7: आरजे सिमरन के साथ।
8: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
9: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
10: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

0: की करा। यार पता है सोशल मीडिया पे बड़ी क्यूट क्यूट चीजें भी पड़ी हैं। मुझे नहीं पता कि किसकी फीड के थ्रू ये मेरी फीड पे आया है, बट मुझे बहुत क्यूट लगा ये अकाउंट। सो एक पंजाबी फैमिली है, कहीं शायद अमेरिका किसी तो फॉरेन कंट्री में रहती है। सो वहां पर वो अपने बच्चों के साथ रहता है। वहां पर एक जो गोरा है, आपा पंजाबी जिन्होंने गोरा ही कह देने है ना, एक इंग्लिश मैन है, एक बंदा है जो उसका दोस्त है, जो कि वर्कर है। ओके सो वो उसका दोस्त है। सो हर रोज वो उसके घर के बाहर जब आता है, वो जो एक पंजाबी फैमिली है, वो उसको हर रोज देसी खाना खिलाती है। कभी उसके लिए छोले भटूरे, कभी पाव भाजी, कभी आलू पराठा, कभी जलेबी। सो उसका नाम है किकू। ओके सो वो उसको बोलता है किकू भाई। सो उसको इंडियन फूड इतना ज्यादा पसंद है भाई। अंग्रेजों को मैंने देखा है, इंडियन खाना बहुत ज्यादा पसंद होता है। मैं बहुत सारे ऐसे अकाउंट को देखती हूँ क्योंकि मैं खाने वाले वीडियोस बड़े देखती हूँ, ठीक है। सो उसमें वो बटर चिकन के साथ समोसा खाना उनको बहुत ज्यादा पसंद है। सो या अभी वापस से पॉइंट पे आते हैं, तो वो एक फैमिली, एक पंजाबी फैमिली है जो कि वो जो गोरा है, वो जो अंग्रेज है भाई, वो उसको हर रोज कोई ना कोई इंडियन फूड खिलाते हैं। और वो बंदा भाई साहब इतना खुश होता है वो इंडियन खाना खा के, इज लाइक कि यार बहुत स्वाद खाना तुम लोग जो है वो बनाते हो। सो यार बड़ा ही क्यूट सा अकाउंट है, हर रोज मेरी फीड पे आ जाता है। दो आई डोंट फॉलो देम, बट या बड़ा ही क्यूट लगता है यार ये चीज मुझे। हर हर अलग अलग कंट्रीज का, यू नो, अलग अलग जगह का जो लोग फूड ट्राई करते हैं, क्योंकि आपको अपने फूड का पता है, मुझे पता है मेरे देसी खाने का, बट मेरा देसी खाना जब कोई और खाता है और उसकी तारीफ करता है, बड़ी खुशी मिलती है यार, है ना। सिमरन गौर आपके साथ, जी हो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। Cool song.

0: आते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गदर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

यार वेलकम टू जंगल फिल्म अभी तक मैंने देखी तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग तारीफ भी कर रहे हैं, थोड़े से मिक्स रिव्यूज है। बारे में नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था, लेकिन मेरे को अभी पता लगा कि रवीना टंडन फाइनली अक्षय कुमार के साथ 22 साल के बाद उनका जो है वो उन्होंने रीयूनाइट किया है। एंड अक्षय कुमार के बारे में उनका ये कहना है कि वही वो बंदा जो है वो सक्सेस जो है वो डिजर्व करता है। एंड हम सबको पता है कि अक्षय कुमार और रवीना टंडन का क्या पास्ट रह चुका, उसके बाद इन्होंने फिल्मों में काम नहीं किया, लेकिन आफ्टर 22 ईयर्स नाउ आई वॉन्ट टू सी दिस मूवी। यार करीना कपूर एंड अक्षय कुमार की क्या ट्यूनिंग है इस फिल्म में, क्या बॉन्डिंग है। या कभी कभी ना इंसान अपनी लाइफ के एक ऐसे फेज में जब पहुंच जाता है ना जहां पर उसको चीजें लेट गो करनी पड़ती है, तो हो सकता है रवीना टंडन ने भी लेट गो कर दिया हो और फाइनली 22 साल बाद वो ऑन स्क्रीन है अक्षय कुमार के साथ। इन तारीफ भी कर रही है यार सिमरन कौर आपके साथ जियो बिंदास।

0: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. गदर की नंबर वन आरजे
2: सिमरन के साथ.
3: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद.
4: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
5: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

listening to Radio Olive 106.3 FM. Geo Bindas.

हाँ जी, चलो अब सिमरन कौर के ऐसी गलती माने का टाइम आ चुका है। कल संडे फिर से शुरुआत हो जाएगी वीकडे की और हम फिर से इंतजार करेंगे वीकेंड का। कोई टेंशन नहीं है, चार दिन में वापस से वीकेंड ला देंगे यार, आप टेंशन मत लीजिए। अगले दो घंटे जो है मिडनाइट लाउंज को एंजॉय करिए एंड हाइड्रेट योरसेल्फ, पानी वाली टाइम से पी लीजिएगा और मेरी तरह ब्लैक कॉफी मत पीजिएगा। कल रात मैंने 10 बजे ब्लैक कॉफी पी ली थी, लेकिन मैं हम पंजाबी हैं, हम सो गए थे, दो घंटे बाद उसके नींद आ जाती है हमको, लेकिन आपका पता नहीं है। मुझे सुनते रहिए रेडियो ऑलिव कोर, कहते रहिए जियो बिंदास, खाने में देर ऐश करते रहो, चेहरे वड्डे वाली स्माइल रखो, किसी का दिल मत दुखाना, बी नाइस टू एवरीवन यार, गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू, सो किलो।

गुड इवनिंग, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज. आज सैटरडे है और आज इस सैटरडे को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाएंगे विद मिडनाइट लाउंज. सो आज घर जाकर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कीजिएगा. अपनी अलमारी या कोई पुराना ड्रॉल खोलिए और देखिए कि वहाँ कोई ऐसी चीज़ ज़रूर मिलेगी जो आज किसी भी काम की नहीं है, फिर भी आपने उसे संभाल कर रखा है. शायद मे बी पहली सैलरी का नोट हो सकता है, कोई स्कूल का आईडी कार्ड हो सकता है, कोई पुराना मूवी का टिकट, या यू नो किसी का हैंड राइटिंग वाला छोटा सा पेपर. सो लोग कहते हैं कि हम ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट नहीं करते, हम उनकी स्टोरीज को कलेक्ट करते हैं. हो सकता है कि मार्केट में आज कोई यू नो बहुत ही ईजीली 50 रियाल की कोई वॉच मिल रही है, लेकिन किसी के लिए उसकी वैल्यू प्राइसलेस हो सकती है क्योंकि उस पर वक्त नहीं यादें चल रही होती हैं. और शायद इसीलिए जो मैरी कॉन्डो है उसने भी कहा था कि कीप ओनली व्हाट स्पार्क्स जॉय. हर चीज़ की वैल्यू उसके प्राइस से नहीं होती, उसके पीछे की कहानी से होती है. तो आज रात का सवाल है कि आपके पास ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आप कभी फेंक नहीं पाएंगे और क्यों. सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल, दिस इज मी मुस्कान विद यू और नंबर है 3311063. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: ये है मिड नाइट लाउंज।
1: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, रेडियो ओलिव 106.3।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM. दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज. कभी नोटिस किया है, जब कोई सक्सेसफुल होता है तो लोग कहते हैं यार इसकी तो किस्मत अच्छी है. लेकिन क्या सक्सेस सिर्फ लक होता है या कुछ और? एक ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट जो है रिचर्ड वाइजमैन, उन्होंने कहा था सालों तक लकी और अनलकी लोगों पर रिसर्च हुई और उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात भी नोटिस की. लकी लोग सिर्फ चांस का वेट नहीं करते, वो अपॉर्चुनिटी को नोटिस करते हैं, नए लोगों से बात करते हैं, नई चीज़ों को ट्राई करते हैं और फेलियर के बाद जल्दी वापस उठकर खड़े हो जाते हैं. यानी लक कई बार दूर से मैजिक लगती है लेकिन पास जाकर देखो तो उसके पीछे प्रिपरेशन होती है. और मुझे लगता है कि लाइफ में भी ना हम सबके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, फ़र्क सिर्फ इतना ही होता है कि कौन उन्हें पहचान पाता है, कौन उनको ग्रैब करता है और कौन यू नो ऐसे ही जाने देता है. आप लक पर ज़्यादा बिलीव करते हो या हार्ड वर्क पर? दोनों का कॉम्बिनेशन जो है एकदम परफेक्ट है और तभी आप सक्सेस होते हो. बाय द वे, सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम मिडनाइट लाउंज.

You are listening Radio Olive 106.3 FM. This is me, Muskan, with you. और शो का नाम है Midnight Lounge. आज की किताब शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी और इसीलिए ये इतनी अच्छी किताब है. नाम है The Dictionary of Obscure Sorrows. अब डिक्शनरी तो हम सब जानते हैं, लेकिन ये डिक्शनरी वर्ड्स की नहीं है, फीलिंग्स की है. ऑथर जो है उन्होंने ऐसे इमोशंस के लिए नए वर्ड्स बनाए जिनके लिए किसी लैंग्वेज में एग्जैक्ट वर्ड ही नहीं था. जैसे सॉन्डर, यानी एक दिन अचानक रियलाइज होना कि रोड पर चलने वाला हर इंसान अपनी एक पूरी कहानी जी रहा होता है, अपनी प्रॉब्लम, अपने सपने, अपनी मेमोरीज के साथ, और हम उसकी स्टोरी का सिर्फ एक पासिंग सीन है. कितना ब्यूटीफुल थॉट है ना. सो इस किताब के वर्ड्स जो हैं वो इतने पॉपुलर हुए कि दुनिया भर में रीडर्स उन्हें डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ करने लगे. सो हर इमोशन को नाम तो मिल गया, और मिल जाए तो शायद उससे समझना थोड़ा और आसान हो जाएगा. तो अगर आपको किसी फीलिंग का नाम रखना हो तो आप किस फीलिंग का नाम रखोगे, या वो कौन सी फीलिंग होगी जिसे आप एक्सप्रेस करना चाहोगे. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान और ये है मिडनाइट लाउंज. नंबर है 3311106. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

गुड इवनिंग कतर, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम मिड नाइट लाउंज. भाई सैटरडे है, आई एम श्योर वीकेंड आपका बहुत ही अमेजिंग गया होगा. आपने अपने वीकेंड पे वो सारी चीज़ें कर ली होंगी जो आप हफ्ते भर से सोच रहे थे, चाहे वो ग्रॉसरीज हो, चाहे वो यू नो दोस्तों से मिलना हो, या सुकून से बैठ के बस ब्रेकफास्ट करना. कभी किसी मूवी को देखकर मन किया है कि यार एक बार तो यहाँ जाना है. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मूवी सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं करती, कभी कभी वो टूरिज्म भी बढ़ा देती है. फॉर एग्जाम्पल, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे के बाद स्विट्जरलैंड जो है वो इंडियंस के लिए टूरिस्ट ड्रीम डेस्टिनेशन बन गया था. फिर आया जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, उसने स्पेन को रोड ट्रिप्स और टोमाटिना फेस्टिवल को बहुत ही फेमस कर दिया था फॉर इंडियंस स्पेशली. फिर ये जवानी है दीवानी के बाद ट्रैकिंग और सोलो ट्रैवलिंग का क्रेज बढ़ा. लोगों को समझ में आया भाई सोलो ट्रैवलिंग नाम की भी कोई चीज़ होती है और वो की जा सकती है. मतलब अकेले आप बोर नहीं होते हो, आपको खुद के साथ टाइम मिलता है. सो टूरिज्म के जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि सेट जेटिंग इसे कहते हैं, यानी लोग मूवी या वेब सीरीज की शूटिंग लोकेशंस पर सिर्फ इसीलिए ट्रैवल करते हैं क्योंकि उन्होंने स्क्रीन पर वो जगह देखी होती है. एक अच्छी स्टोरी सिर्फ दिल तक नहीं जाती, कभी कभी पूरी सिटी भी फेमस कर देती है. तो आप बताइए कौन सी मूवी देखकर आपको किसी सिटी या फिर कंट्री से प्यार हुआ है. 3311063 इज माई नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: Midnight Lounge.

So, अगर मैं बात करूं आज की, तो आज दुनिया में सब कुछ बहुत ज्यादा फास्ट हो गया है. फास्ट इंटरनेट, फास्ट फूड, फास्ट रिप्लाइज. लेकिन एक चीज है जो दिन बना देती है और थोड़ी सी फास्ट नहीं है, और वो है अटेंशन. कभी नोटिस किया है, हम किसी से बात करते हैं और बीच में फोन चेक कर लेते हैं, मीटिंग्स में नोटिफिकेशंस देखते हैं. और लोग कहते हैं कि जब कोई इंसान हमें बिना फोन देखे पूरी अटेंशन के साथ सुनता है, तो ब्रेन में ट्रस्ट और कनेक्शन की फीलिंग स्ट्रांग हो जाती है. शायद इसीलिए अच्छे लिसनर्स इतने याद रहते हैं, क्योंकि वो सिर्फ जवाब नहीं देते, वो समझने की कोशिश करते हैं. और मुझे लगता है कि आज के टाइम में किसी को 10 मिनट मतलब जेन्युइनली अटेंशन देना शायद सबसे महंगा गिफ्ट है. आप नहीं किसी से 10 मिनट बिना फोन देखे, बिना कुछ किए बात कर सकते भाई. मतलब ऐसा हो गया है कि एवरीथिंग इज फास्ट, बट अटेंशन थोड़ा सा हट गया है, स्लो हो गया. तो आज का सवाल भी आपसे ये है कि आपके हिसाब से किस इंसान ने आपको सबसे अच्छे से सुना है? कौन सा दोस्त है वो? कोई घर वाला या कोई फ्रेंड्स, फैमिली या सिबलिंग्स? सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान और ये है मिडनाइट लाउंज. 3311 1063. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

हेलो। अगर मैं कहूँ हर सिटी का, हर कंट्री का अपना एक अलग यू नो साउंड ट्रैक होता है, मतलब रियल लाइफ वाला। सोचिए अगर आप कतर में हैं तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर हर चीज़ में आपको एक अलग वाइब नज़र आती है। इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो मुंबई की लोकल ट्रेन की आवाज़, कोलकाता की ट्रैम या फिर केरला की बारिश और दोहा की शाम और अजान की आवाज़, मतलब हर चीज़ में आपको एक हर जगह पर एक डिफरेंट फील नज़र आता है। सो दिल्ली की बात करूँ तो वहाँ पर वो चाय की केटली की सीटियाँ नज़र आती हैं, दिखती हैं, सुनाई देती हैं और ये सब मिलकर उस सिटी का साउंड ट्रैक बन जाता है। सो साउंडस्केप एक वर्ड है जो रिसर्चर्स ने इसे दिया है। हर सिटी का अपना एक नेचुरल साउंड इन्वायरमेंट होता है और ये साउंड जो है वो हमारी मेमोरीज में बहुत स्ट्रांगली स्टोर हो जाता है। इसीलिए कई साल बाद भी कोई आवाज़ सुनते ही हम उस जगह और उस इंसान को याद कर लेते हैं। सो अब मुझे बताइए, आज का मेरा सवाल भी यही है, अगर दोहा का एक साउंड ट्रैक बनता है तो उसमें कौन सी तीन आवाज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट होंगी। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 FM. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम मिडनाइट लाउंज. दुनिया सिर्फ अलग लैंग्वेज से ब्यूटीफुल नहीं होती, अलग ट्रेडिशन से होती है. जैसे आइसलैंड में एक ट्रेडिशन है, क्रिसमस ईव पर लोग एक दूसरे को किताब गिफ्ट करते हैं और फिर गर्म कॉफ़ी या हॉट चॉकलेट के साथ रात भर उस किताब को पढ़ते हैं. इस ट्रेडिशन का भी एक नाम है जो मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगी, मतलब क्रिसमस बुक फ्लड इसे कहते हैं. जापान में लोग चेरी ब्लॉसम के नीचे बैठकर इसे सेलिब्रेट करते हैं. स्पेन में जो टोमाटिना वो है उसे सब कुछ यू नो फेस्टिवल की तरह मनाते हैं. सो हर ट्रेडिशन के पीछे एक कहानी है और शायद इसीलिए ट्रैवलिंग सिर्फ प्लेसेस देखना नहीं होता, लोगों को समझना भी होता है. सो अगर आप किसी एक कंट्री का एक ट्रेडिशन यू नो कतर में लेकर आना चाहो तो वो क्या होगा? बाय द वे, कतर इज़ ऑलरेडी यू नो फुल ऑफ ट्रेडिशन. यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप वैसे ही इंजॉय कर सकते हैं, चाहे वो करक चाय हो या फिर यहाँ के अलग अलग ट्रेडिशंस हो. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास
1: ये है मिडनाइट लव।

उड़दर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

और आज रात का ये आखिरी थॉट है। इमेजिन कीजिए आज से 50 साल के बाद आपकी लाइफ पर एक म्यूजियम बनाया जाए, लेकिन कंडीशन ये है कि उस म्यूजियम में सिर्फ 5 चीज़ें रखी जा सकती हैं। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान, शो का नाम है मिडनाइट लाउंज। सो हो सकता है एक चाइल्डहुड का कोई टॉय हो, फर्स्ट आपका फ़ोन या मोबाइल हो, एक डायरी, कोई पासपोर्ट, वेडिंग फोटोग्राफ या फिर पहली सैलरी का नोट। इंटरेस्टिंग बात यह है कि म्यूजियम हमेशा एक्सपेंसिव चीज़ें प्रिजर्व नहीं करता, वो बहुत ही मीनिंगफुल चीज़ें प्रिजर्व करता है जो एक कहानी बताती है। और शायद हमारी लाइफ भी ऐसे ही है, हमारी पहचान हमारे बैंक बैलेंस से बिल्कुल नहीं होती, हमारी स्टोरीज से होती है। तो आज रात का आखिरी सवाल भी आपसे यही है कि आपकी लाइफ का म्यूजियम बने तो उसमें कौन सी 5 चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी होंगी। और याद रखिए, कभी कभी एक छोटी सी चीज़ पूरे ज़माने की सबसे बड़ी कहानी जो है वो सुना देती है। सभी के लिए गुड नाइट, मेरा नंबर है 3311063, यू कैन व्हाट्सएप मी। और सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: We have Midnight Lounge.
0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.

0: तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे, आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो बिंदास।
1: आरजे सिमरन के साथ
2: यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM।
1: Bindas।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। बिंदास। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।